अंगीकार करने देख सचगे हाजर दर प्रवान होवे प्रवान है प्रसाद संगत वरताउन दी आग्या बख्शो आई संगत दी हाजरी तलफल भेटा कीती दर प्रवान करनी परिवार सुख शांति जड़ दरदाता बख्शनिया सहज पाठ जी की संपूर्णता जी की अरदास सद बाणी शब्द कीर्तन साहब जी की अरदास भुल चुक माफ करन इस बेनतियां गुरमत अनुसार प्रवान करदे हां बख्शो लाई श्री मुखवाक सही प्यारे मेल जना मिलिया तेरा नाम चेतावै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

इतनी हाजरी प्रवान करनी फुलचुक दी खिमा सवाब हुण आप जीआं नूं सत्कार योग ज्ञानी प्रतपाल सिंह जी पटियाले वाले कथा गुरमत विचारां द्वारा निहाल करनगे उन्हां तों बाद रागी भाई भिंदर सिंह जी श्री दरबार साहिब वाले उस तों उपरंत जो भाई लखविंदर सिंह सोल दा ढाडी जथा ते 9:15 दे करीब जो रैन सुभाई कीर्तन आरंभ होने हन जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मिले दान संतरेन जहे लग भवजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पहावै।

है हे भाई तू नाम त्या हाले भी बेड़ा डुले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। कहावत है ना कहिंदे जिन्नी देर तक शरीर च साह चलदे आ कुछ नहीं बिगड़िया। हाले भी बेड़ा वेला भाई नाम त्या जदों तू नाम त्याएगा दर सच्चा सोभा पाई। तू वाहिगुरु परमेशर दे सच्चे दर देते जाके सोभा पावेगा माण प्राप्त करेगा दोहां जहाना च सत्कार प्राप्त करेगा। खालसा जी अक्सर असी दुनिया के बंदियां दी परवाह करदे आ वी लोक की आखणगे लोक की कह रहे ने। मैं अक्सर बेनती करदा हुन्ना वीर दीप सिद्धू ने एक बड़ा प्यारा बचन कहा सी किसे समय जदों लोक उन्हूं गदार कहिंदे सन जदों लोक आखदे सन कि ये गदारां दा इंसान है ये किवें साडे विच आ गया घुसपैठ करन आया है तां उदों उन्हें बड़ा प्यारा जवाब दिता सी। वो कहिंदा मैं दुनिया के लोगों का जवाब दे नहीं हाँ लोग की आखते ने मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं अपने गुरदेव गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब के सानमुख कहो जहाँ हाँ वो मायने रखता है। मैं अपने गुरु की दृष्टि च की हाँ मैं अपने गुरु को जवाब दे हाँ ना कि दुनिया दे लोगों नू। हे गुरमुखो प्यारियो इत्थे गुरदेव जी कह रहे ने कि अकाल इस दुनिया में जिन्ने मर्जी लोग बड़े बड़े सोभा वाले है कहते जी फलाने बंदे की बड़ी सोभा है पर नहीं जानिए भी अगे परमात्मा की दरगाह में उहदे नाल की बीतनी है। इत्थे जिन्हां दी सोभा हो सकदा वड्डा होआ दुनीदार गल संगल घत चलाया ते इत्थे लोग जिन्हां नूं गदार दा टैग लाण हो सकदा वह निरंकार अकाल पुरख की दरगाह में सच्ची सोभा पाउण वाले होवण। इस करके परमेशर की दृष्टि में की हाँ वह असीं अपने अंदर झाती मार के वेखना है। दूजियां दे औगण फरोलण तो पहला अपने अंदर झाती मारी असी खड़े कित्थे आ। असी अकाल पुरख की दरगाह च जाना है उत्थे साडे किहो जे कर्म हन ते असी उत्थे जवाब दे होना ये साडे अंदर साडे आपे नूं पता होना चाहीदा है। दूजियां दीआं गलतियां दूजियां दे औगण दूजियां दीआं बद फैलियां फरोलण तो पहला अपने अंदर झाती मार के वेखी असी कित्थे खड़े हाँ। आप नड़ै गिरीवान मैं सिर नीवा कर देख अपने अंदर झाती मार के वेखण दा यतन करना चाहिए। सो इनियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां। संध्या दे दीवाना दी दास दी अज समाप्ति दा दीवान है। कल दोपहर नूं आप जी दे दर्शन परसांगे छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब दा पुरब मनाया जा रहा है पलाई साहब दीआं संगतां वल्लों जिथे महाराज छेवें पातशाह ने चरण पाए बख्शिशां कीतियां उस इलाके की सारी संगत गुरपुरब मना रही है। कल दोपहर के समागम च छेवें पातशाह जी की महिमा गावांगे रल मिल के। तो अज दास की यह हाजरी आप जी ने प्रवान करनी कोटान कोट शुकराना जगत पिता श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का आप सारिया संगतां का धन्यवाद अकाल जोत सिंह का धन्यवाद जिन्होंने नाल पाठ पढ़ाण की सेवा की है इत्थे सेवा निभाउंदे है कार विहार अपनी किरत विरत भी करते हैं पंथ के महान प्रसिद्ध विद्वान ज्ञानी सुरजीत सिंह जी सोधी जिन्होंने सैकड़े विद्यार्थियों गुरमुख की विद्या के नाल जोड़ के गुरु पंथ के प्रचार प्रसार वास्ते प्रचारक बनाया उस परिवार विच उन्होंने पोतरे हैं उन्होंने पोथी पढ़न की सेवा निभाई धन्यवाद। आओ अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए जी।

जन्म मरण कीते मुख उजल सदा सुखी नाम सिमरत एक ओंकार सद प्रसाद राम कली मन दा तीजा आनंद।

दर्शन ते आई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नो निध आवै ताए सब थाए हो सहाय। दसम पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जीओ महाराज नाम अमृत के दाते टुटियां गंढन वाले सरबंस दानी पिता जी आप अपने खालसा पंथ नू सब थाए हुए सहाय।

काम क्रोध अर लोभ मोह बस कर सभय बल सदा सुख मन में सह दुख संसार खोवे गुर नाम नित दरियाओ जन्म हम का

आवे कांखी एक दर्स तुहारो नानकुन संग मोहे उधारो सुख मने सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभु के सिमरन गर्भ नाम असे प्रभु के सिमरन दुख जम नसे प्रभु के सिमरन काल पर हरे प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत किश बिघन न लागे प्रभ के सिमरन अंदिन जागे प्रभ के सिमरन पाओ ना व्यापे प्रभ के सिमरन दुख ना संतापे प्रभ का सिमरन साध के संग सर्वनिधान नानक हर रंग

रतन त्याग कौडी संग रचे सा छोड़ झूठ संग मचे जो शरणा सो अस्तिर कर्मा ने जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए तिसका शर्म करे संग साहे तिस पर हरे।

ममता माया मिथ्या जाम राज जोवन तन्माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथस्ती असवस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेग हस्ता मिथ्या त्रो मो अपमान मिथ्या अपसु पर कर्त गुमान अस्त्र भक्त साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण

कैसे धरे उपरे आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नायो मान, ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊंचा मन अपने, है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नान, जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल गिरी नाथ, ब्रह्म ज्ञानी चिन्ना।

अभ्यास ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चंद ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवे आप ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस बट भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को मल मल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोज जाये महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए दाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने

सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्त करे नेक जाने अंत न पारावार नानक रचना प्रभु जी भव दे अनेक प्रकार अस्पति

दुख में दुख नान संत भावेता उसका भी हो मोह संत का दुखी सब मित संत का दुखी किसे कानी मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी मांकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख न सुते डरे संत के दुखी को नाई ठाओ नान संत भावता ले मिलाए संत का दुखी अज भीते टूटे संत का दुखी किते काज ना पहुंचे संत के दुखी को ध्यान भरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर दे तो था जो सास मिना मृत की लोता संत के दुखी की जड़ किसने

होए दसा कोई होए पया कीर्तन मेटे कोए नान जाने सच्चा सोए सब कर दिसके ओ करने हार सदा दिसको नमस्कार बबकी उस्तत करो दिन रात तेज त्यावो सास ग्रास साफ कुछ बरते तिसका किया जैसा करे तैसा को तुया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनों कृपा करे

के राज में, राजयोग में जोगी तप में तपिसर किसमें भोगी, त्याय त्याय भक्ता सुख पाया, नानंद प्रका किने अंतर पाया, जाकी लीला कीमत नाए, सकल देव हारे हम गाये, पिता का जन्म के जाने भूत, सकल पुरोही अपने सूत समात ज्ञान ध्यान।

नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन सरवण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए नान चौथे परमेश्वर जन गद पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरुख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरुख समा समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पाद सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए जिसे सब भली सत नाम प्रकाश उदाय विश्वास सत नान गुरु ते पाई

समीत विचारो चरण कमल हृदय में और धारो कर्ण कारण सुमराव सम्राट दृढ़ कर गो नाम हर बत हे हो तन संचो हो वो भगवंत संजना का निर्मल मन दे आस रखो मन माए सर्व रोग नान मिट जाए जिस तन को चार कुंटर धावे सो तन हर सेवा दे पावे जिस सो को निर्वाशे मी सो साधु संग परीत जे शोभा को करे भली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अन को बावी रोग न जाए रोग मिटे हरे औख दलाए सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दरगे प्रवान मन पर बोधो हर के नाए दै दिस धाव दे आवे ठाए ता को विघ्न न लागे कोहे जा के हृदय से हर सोए कलता दी ठंडा नाओ सिमर सिम सदास को पाओ भविन से पूर्ण होए आस भक्त पाए आत्म प्रकाश तत्कर जाए बसे अवनासी को नानक काटी जम्पासी

देव का कोचीन। जावे अपने आप आप उधारे तो सगन सगन कहा विचारे जय आप नाप नाम नेरा तय कौन टागर कौन कही है चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय छल छेद भेष माया हुआ किसे व्याप्त माया।

तत्काल उधारे निर्मल शोभा अमृता की बाणी एक नाम मन माए समाणी दूरो बिनसे पै परम ना साध नाम निर्मलता के कर्म।

के बोलन बोलिया जय सुन तरे प्यार। अमृत वेला सचनाओ वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नजरी मोख द्वार। नानके वै जानिया सव्यापे सच्यार, थापिया न जाए किता ना होए, आपे आप निरंजन सोए।

असंख जाप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख रनमुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दाचार असंग सूरमो पाख सार असंग मौल्य विलायचार।

साहिब जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाग पातशाही दसवीं छपे छंद त्वय प्रसाद चक्र चेन अर बरन जातर पात निहंजे रूप रंग अरे पे को कह ना सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश संतोष के जय कोट इंद्र निराण शाह गणित जय

चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए चा श्री छंद न सतरे न मित्रे न परम न मित्रे न कर्म न काय न काय जन्म अजाय न चित्रे न मित्रे परे पवित्रे प्रति से अधिसे किरसे भक्ति छंद्व प्रसाद के शिज देसे के बिज भेसे के गंज घर में के पंज भर में के बिज लोके के उदित सोके के दूत बरने के विभूत कर्ण के राजन प्रवाह के धर्म तुझा है के शोक भरने के सर्वा भरने के जगत कृति है के शत्रन क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप के अनुभव अनुप के आद देव के आप भेव चित्रम बहीने के दीने के रोजी रजा के रसी रही मेरा के पाक व्यय के कह बुल गय के अवल गुना है के शान छाए के कारण को निंदे के रोजी रहने के राज करही मैं के कर्म करी मैं के सर्वंकलिये के सर्वन दलिये के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिये के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र पाणे के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र मानिए सदेव प्रधानी है के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए के सर्वत्र भाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्रे के सर्वत्र चंद्रे के सर्व कलिमे के परम पहिमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुसन वजू है तमावल रजू है हमेशल सलामे सली खदम दामे गनीमल शिकते गरीबल परस्ते बिलंदल मकान है जमीन जमाने तमीजल तमा मेर जूल ने दाने हरीफल अजी मेर जायक अजकीने अनेकल तरंग है वेद है पंग है अजीजल निवाज है गनीमल खिराज है रुक्त स्वरूप है त्रमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुक्त सदा है सदेव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है

एकादे सुभं सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है शिज है शूद है कि नरकम प्रणास है पृथ्वी प्रवास है नृक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है।

जाचकन एक सो एक दवैया। दानव देव नंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे, जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब धाप तपेंगे, पुन प्रतापन भाण जय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे, सासू प्रसन्न फिरे जाग।

एकै रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव के तू पांड जे रिसे दिशकिनी उतुष्कान बौराज तिनी कऊ भूल राजा बैठा कऊ सिन प्यो संकर कैठा कहूं सिमट प्यो शंकर कैठा सिगरी सिद्ध खाए चंबवा जुगा श्रु स्वंब अवरछा मेरी तुम करो सिख्या वार सिख्या संगरो दुष्ट ते उड़वत पाता सकल मलेश करो अणघाता जे तू तसलनी परे तिनके दुष्ट दुख तुम मरे पुरख जीवन पर परे तिहारे तिनके तुम संकट सब डारे जो कल को एक बार तिहाई

चाहे कृपा करी अंबर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सवराता कल वे सकल दे को हरता तुझ दो किन को जा करता श्री तुझा पै दे अल्लाह पूर्ण करा ग्रंथ काला मन वासित पल पावे सोई।

जाकी एक वो चौपी होके चौपी सम्मत सत्रह सहज पंडित जय हर सहज पंथी इनकी जय बहादुर सुधी अष्टमी रविवार तीर्थ तद्रव गंध सुधारा सोई है पाएंगे जब ते तुमरे।

गावो सच्ची बाणी। कहे नान सुनो संतो कथियो कथ खाणीए, मन चंचला चतराई किने ना पाया, चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिने भरम भुलाया, माया तो मोहनी तिने की जंड गोली पाईया, कुरबान किता तिसे बिटो जन्मो मिठा लाया। कहे नानक मन चंचल चतराई किने ना

प्यास न जाए, प्यास न जाए। उर्द किते चरा रस पल्लै ना पाए, हरस पाए पल्लै पीए, हर रस बोड़ ना तृष्ण लागे आए। एव हरस करमी पाई है, सतगुर मिले जिस आए, कहे नानक हो रन सब विसरे।

दोई कुदरत साजिए करा सिंठ चाओ। दाता करता आप तो तुझ देवे करे पसाओ, तू जानो सबसे दिल ऐसे जिंद खुआ। कार्य आसन डठो जाओ, कार्य आसन डठो जाओ।

0: वाले हो, जिन कीती सो पार पया कहो नानक कर दे गियां बातां, जो किश करना सो कर रहा महला दूजा।
1: जो शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं।

तिल पूजस बगुल समादंग मुख झूठ विभूकण सारंग त्रैपाल तिहाल बिचारंग गल माला तिलक लीलाटंग दोई धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं करमं सफोकट निश्चो करम।

औड़ नानक अंतर जपनी हर तां के पारावार आप करे साक्ति फिर आप करे बार एक नगले जंजीरियां की त्रिछड़े बिशियार आप कराए करे आप हो कैसे करे पुकार नानक करना जिनकी या फिर तो सही करनी।

पुन नेत्रों नींद न आवे, रसना नाम जपहो तब मथिया, इन विद अमृत पावहो, मन संपट जित सत सर नहावन, पावन पाती तृप्त करे, पूजा प्राण सेवक जे सेवे, इन विद साहे।

निराश हो जाओ, आस छड़ दो सब दी। जिन्हां दे आपां आसां रखदे आं फिर किहड़ा पूरियां हो जांदियां ने। जीते भी आस रखी दी 90% तोड़ दिंदे आ। जीते दिल रखी दा दिल तोड़ दिंदा, जीते आस रखी दी आस तोड़ दिंदा, जीते प्रेम रखी दा प्रेम तोड़ दिंदा। ते फिर ऐसा रख के भी की करना। महाराज जी कहिंदे वाहिगुरु ते रख लो, यही जमाउणा उपदेश नूं महाराज दे अंदर दुध नूं। हुण की करना,

महाराज कहते हुण अमृत पाउणा कित्थे आ इह कहिंदे संपट कहिंदे ने डब्बे नूं मन रूप डब्बे दे विच डोलू दे विच ते कहिंदे फिर जिन्हां ने अपने मन रूप भांडे च अमृत पवा लिया ना उन्होंने भाई सत सर नावन सच्चे तीर्थ ते इशनान प्राप्त कर लिया है। आखो सतनाम। जो मन रूप बर्तन च अमृत पैंदा ना अंदरला सच्चे तीर्थ ते इशनान हुंदा मन दा। बाणी दे विच महाराज जी ने तीर्था और सरोवरां दा जिक्र किया किन्ने तरह दे ने। एक महाराज जी ने कहा अमृत सरोवर श्री गुरु रामदास साहब जी दे दर दा। कल व्याख्या आपां सुनी सी सारी। दूसरा है गुर तीर्थ दरियाओ गुरु सरोवर है। तीसरा है वाहिगुरु दे नाम दा सरोवर अंतरात्मे दा सरोवर अंतरात्मे दा तीर्थ। ए तिन्ने तीर्थां दा वखरा वखरा महाराज जी दी बाणी च जिक्र है वखरा वखरा महात्म है और वखरा वखरा ही महाराज साहब जी ने उनू साजिया है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु तीर्थ शब्द रूप च साजे है ते अमृत जल रूप दुनिया भी जल रूप च साजे है।

पर जब कर कर तो कब हूं तुम मैं मिल दे तर सब जेते बदन से सब तारे आप अपनी बुझ चारे तुम सभी तेरे तिरालम जानत भेद भेद हर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि नील अनाद संभता का मूड चारत भेदा जा को भेद न पावत भेदा ता को कर पाहन मंत मां मूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिंतन आप अपनी बुद्धा जेती बणत भिन्न भिन्न तो तेती तुमरा लखाना जाए पसारा कै जा प्रथम संसारा एक कै रूप नूस रूपा रंग प्यो राव के भूपा अंड जिर से तिजकिनी तुझ खान बोल दिनी कौ फूल राजा हवै बैठा कौ सिन प्यो शंकर कैटा सगरी सिर दिखाए चंबवा जुआ सरू स्वंबवा वृषा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट जित उठवा तुत्पाता सकल मनेश करो रणघाता जे तुत सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुम मरे पुरख जवन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकने है रचा ऐसा काला दुष्ट रिष्ट काला कृपा दिश तन जान हरियो ताके ताव तन कमो हरियो रिद सिद्ध कर्म सब हुई दुशास सकिन कोई एक बार जिन तुम्हें समारा काल फास्ते ताय उबारा जिन्ना नाम त्यारो का दार दुष दुख ते रहा खड़केत में सन त्यारी आप दे लियो भारी सब ठौर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लियो चाहे कृपा करी हम पर जम माता ग्रंथ करा पूर्ण सवराता केल विक सकल देख को हरता दुष दुख यन कोचा करता श्री तुझा पै दयाला पूर्ण करा ग्रंथ काला मान बांछित फल पावे सोई दुख न तिसे व्याप्त कोई अडल

महाराज के घर च गुरु के सिख नू संत बनाया जाता है, साधु बनाया जाता है। महाराज जी ने जिहड़ी पक्के रूप दे विच तलवार है श्री साहिब है वह दसवें जामे च जा के अपने सिखां दे हाथ दे विच फड़ाई सी। नौ जामे संतगिरी का अभ्यास करवाउंदे रहे महाराज साहिब।

दात दित्ती, अपने बाणे दी दात दित्ती, ते हाथ च तेग फड़ाई। उदो फिर पंजा पंजा हजार फौज लैके, दो दो लख फौज लैके भी अबदाली वर्गियां नूं भज के जान बचाउणी पई। उदो फिर हिम्मत ना पई उस तो बाद कि कोई दो चार बंदे आउण गुरु गोबिंद सिंह दे सिखां नूं भेडां वांगू कट्ठे करके कुट जाण, जिहड़े आम पंजाब दे लोकां नूं उधरों होंदे सी दरिया कैबर राही आउंदे सी, पंजाब दे विचों दी हो के सारे देश नूं कुट के आराम नाल लुट के चले जांदे सी। पर जिद्दण तो कलगीधर पातशाह महाराज ने खंडे दी दात अपने खालसे नूं बख्श दित्ती सी, उस तो बाद किसे दी हिम्मत नहीं पई कि पंजाब दी धरती तों पंजाब ते हमला करके सुक्का लंघिया होवे कोई, चाहे वह नादर शाह सी, चाहे वह अबदाली सी, चाहे वह बहादुर शाह रंगीला सी, जेड़ा भी चढ़ के आया है।

भी ना तलवार नाल भी ना हटिया। महाराज जी कहिंदे फिर अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने सानू कहा कि जाओ, कहा जाओ दुनिया में अवतार लो, राह हक पे ले आओ मखलूक को।

छोड़, इन्हें हक रवि से फना करके छोड़। कहिंदे तैनू रब्बी अधिकार दिते, जेड़े पखंड करदे ने अडंबर करदे ने उन्होंने पखंड भन के रख दे, और जेड़े जालम जुलम करदे ने जुलम करन वाले जालमां दे मूह भन के रख दे। अकाल पुरख वाहिगुरु का हुक्म कलगीधर पातशाह महाराज।